एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास करो।

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाल नाम दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुजार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुजार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी मिशेश जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ। ते अगली काम्य फल तक हरमन सिंह नूं दिओ आग्या। हरमन सिंह वल्लों एक बार फिर सारे स्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम मना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम मना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कहे।

0: उम्र पर महका जान दे।
1: बहुत
0: लो जी, ये
1: शुक्रिया,
0: सी सूफी कलाम
1: थैंक यू
0: ते
1: जी,
0: एक
1: थैंक यू।
0: सॉन्ग जरा जल्दी जल्दी गुनगुनाना ना जे तुहाडी इजाजत होवे
1: जरूर
0: ते।
1: जरूर, आउण
0: हाँ
1: दिओ
0: जी
1: आउण
0: जी
1: दिओ
0: जी
1: जी।
0: जी जी

ये चांद भी जमानों का आईना होगा, ये चांद भी जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरे

बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा।

0: गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है।
0: निगाह दूर तलक जा

मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पक्षियां दी झल नहीं।

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख।

0: लेकिन खुशी दी गल है कि सिक्ख्या विभाग ते माणयोग सिक्ख्या सकत्तर श्री कृष्ण कुमार जी दी इस पहलकदमी नाल ए अहम विशा अज फिर चर्चा दा विशा बनया है।
1: जी बिल्कुल, सेल्फ स्टडी दा अहम विषा लंबे समय तो अणगौलिया होया पिया सी, जो कि फिर चर्चा विच आया है ते लाजमी तौर ते विद्यार्थियों लई सहायक भी सिद्ध होवेगा। लवीश जी, असी विद्यार्थियों लई सेल्फ स्टडी दी गल तां करदे हां, लेकिन सेल्फ स्टडी करनी किवें है, उस दी योजना की होनी चाहीदी है, उस लई विद्यार्थी वल्लों की तैयारी कीती जावे?
0: देखो, मेरा मानना है कि हर विद्यार्थी का पढ़न का आपो अपना एक अलहदा तरीका होंगे, तो हर विद्यार्थी अपने उस तरीके नाल ही बेहतर पढ़ पाता। लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी जी गलों का ध्यान सानू जरूर रखना पैंदा, जिस से अमल करके असी बेहतर नतीजे दे सकते हैं। उस विच सब तो पहला है मजमूना की चोण, मतलब असी किस विषय के कि टॉपिक पढ़ने हैं सैल्फ स्टडी राही, उन्हों की स्पष्टता विद्यार्थी में होना बहुत जरूरी है। दूसरा है पक्का टाइम टेबल, विद्यार्थी नू एक पक्का टाइम टेबल बना के रखना चाहिए है कि उसने किस दिन किस विषय दे किस टॉपिक नू पढ़ना है। ये टाइम टेबल 10 दिन, हफ्ता या 15 दिन का भी हो सकता है, तो विद्यार्थी उस टाइम टेबल नू लिखती रूप में बना के उस जगह पर लगा लवे कंध नाल जिथे बैठ के वह पढ़ता है, ताकि आते जाते वो टाइम टेबल उसके ध्यान में पैंता रहे। विद्यार्थी मन देखो बलराज जी बहुत चंचल हुंदा है, दिमाग में होर बहुत चीज़ां चलदियां हैं, ते कई बार उहदे दिमाग चो ये चीज़ निकल जाती है, लेकिन बार बार टाइम टेबल अखां दे सामने आने नाल वो पढ़न बैठन लई प्रेरित हो सकता है। इस तो अगला काम है मजमूना की तरतीब, कि कहड़ा टॉपिक पहला पढ़ना है, ये बड़ा अहम चीज़ है, पहला कहड़ा टॉपिक पढ़ना है और बाद विच कहड़ा, विद्यार्थी नूं ये पता होना चाहिए है, ता कि वो आसान तो मुश्किल वाल नू वधे, ते पहला पढ़िया होया टॉपिक उहदे अगले पढ़ने वाले टॉपिक दे विच सहायक सिद्ध होवे। विद्यार्थी एक चीज़ का खास ध्यान रखन कि वो ये समझ लैन कि उन्होंने सैल्फ स्टडी सिर्फ पढ़न लई नहीं करनी बल्कि समझन लई करनी है, ते अखीर विच सब तो अहम फीडबैक, ये बहुत अहम चीज़ है। विद्यार्थी रात को सोने तो पहला आत्म पड़चोल करे कि मैं जो पढ़िया है वो मेरे लिए की सहायक है, मैनू उसका की लाभ होया, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी की गल आप कर रहे हैं, तो जिहड़ी फीडबैक है वो भी सेल्फ फीडबैक ही होगी। इसका एक फायदा तो यह है कि जेकर किसी कारण वो किसी दिन नहीं पढ़ पाता तो रात को सोचेगा जरूर कि मैं अज पढ़िया नहीं, क्योंकि अक्सर देखने विच आउंदा है कि विद्यार्थी पढ़न का प्लैन तो बना लेंदे आ पर उसके अमल करन तों केसल मार जांदे आ। सो ये उसकी सैल्फ स्टडी की निरंतरता नूं बनाई रखने लई बहुत सहायक सिद्ध होएगा।
1: जी बिल्कुल लवीश जी, तुसीं बहुत वधिया सुझाव दे रहे हो, बहुत कम दियां गल्लां स्रोतियां नाल सांझियां कर रहे हो, मैनू भी बहुत चंगी तरह समझ लग रही है, ते उम्मीद है कि प्रोग्राम सुनने वाले स्रोतियां ते खास करके विद्यार्थियों लई भी ये गल्लां लाहेवंद साबित होणगियां। चर्चा नूं अगे तोरदे होए लवीश जी, इस गल ते चानना पाओ कि अजिही पढ़ाई नाल असीं कह सकदे हां कि विद्यार्थी सही दिशा वाल अग्गे वध रहे हन जां उस दी डायरेक्शन सही है?
0: जी बिल्कुल, असी ये कह सकते हैं। देखो बलराज जी, किसे पढ़ने वाले विच ये आदत होना बहुत जरूरी है, ये आदत बनना ही अपने आप विच को उपलब्धि है। तुसी इसनों सिर्फ स्कूली पढ़ाई या सिलेबस पढ़न की हद तक ना विचारो, इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। जरा अपना बचपन याद करो, असी बचपन विच वेले बैठे चाचा चौधरी, नागराज आदि कई कॉमिक्स ते बाल कहानियां दी किताबां पढ़दे हुंदे सी, ये भी एक तरह की सैल्फ स्टडी सी। वेले बैठे अजिहियां प्रेरणादाई बाल कहानियां पढ़ते हुए बिना किसी के उपदेश दित्या ही कई तरह दियां नैतिक कदरां कीमतां सहजे ही साडे जीवन का हिस्सा बन गईयां, जिवें ईमानदारी, सच बोलना, धोखा ना करना। इन्हां कॉमिक्स पढ़न नाल सानू वेले समय पढ़न की आदत पई, जो पहलां तां सानू अपने सिलेबस के पाठ पढ़न तक लै के गई, तो फिर उस तों बाद अगे वध के साहित पढ़न तक लै गई। तुहानू याद होवेगा कि अपने पक्के इम्तिहान देने तो बाद असी स्कूल खुलन तो पहला ही ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ